दोस्तों वाकई में ही ऊपर वाले का तो जवाब ही नहीं है। और हम उस बात के लिए ईश्वर का शुक्र नहीं करते जो हमारे पास होती हैं। हमारा ध्यान केवल कमियों की तरफ ही जाता है। दोस्तों बीते पल कभी वापस नहीं आते, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन जहां हम रह रहे हैं या किसी के साथ रह रहे हैं, खिलते और महकते फूलों की तरह

बात बिल्कुल सच है कि जो पल गुजर जाते हैं कभी नहीं आते, जो आज है वो कल बन जाएगा और कल परसों बन जाएगा, और जो पल चल रहे हैं वो अच्छे से निकल जाने चाहिए। दोस्तों, एक बात हमेशा मन में ध्यान रखिए कि खूब मस्ती करें लेकिन किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, और आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ ही भोर सुहानी कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट हैज बीन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ फास्ट ग्रोइंग क्रेडिबल एंड रिलायबल ग्लोबल पावर। President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends four officials in connection with Lucknow fire incident. Four accused arrested. Four ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
1: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
0: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said, initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की

0: രഞ്ജിനി. ആകാശവാണി 103.6 റിയൽ FM. ഇനി നാളെ രാവിലെ 5:48 വരെ FM ഗോൾഡ് ഡൽഹി പരിപാടികളുടെ റിലേ കേൾക്കാം.
1: നമസ്കാര. ആകാശവാണി സമാചാർ കെ സാത്ത് മേ പൂനം. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की. कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया. दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया. साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है. प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी. इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई. इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया. इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए. पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है. पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है. नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही.
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है. और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे. 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना.
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है. इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा. सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है. वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है. पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया. भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो अब तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में गोल्डन नेरा के उन बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं। वो चुनिंदा नगमे हम आपके लिए लेकर आए हैं जो 40 से लेकर 60 के दशक के हैं। आमतौर पर गोल्डन नेरा या सुनहरा दौर जिसको हम कहते हैं हिंदी सिनेमा का 1940 से 1960 के दौर का माना जाता है। उस बीच बेहद खूबसूरत फिल्में बनी बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत सामाजिक मुद्दों को उठाते हुए फिल्में बनी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए गए जो आम इंसान की जिंदगी से जुड़े हुए थे और फिर नगमे भी बिल्कुल वैसे ही हुआ करते थे। तो आइए आज के इस सफर का आगाज करते हैं ऐसी ही एक बेहद खूबसूरत फिल्म से जिसका नाम है आर पार। यह फिल्म आई थी 1954 में। गुरुदत्त साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए थे खुद गुरुदत्त साहब और श्यामा और साथ ही कलाकारों में शकीला, जॉनी वॉकर, जगदीप, जगदीश सेट्टी, साथ में थे वीके मूर्ति, कुमकुम और टुनटुन वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है हम सब के प्यारे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है इसको ओपी नैयर साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं शमशाद बेगम की बहुत ही प्यारी आवाज में आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

शमशाद बेगम जी की आवाज में ये नगमा था फिल्म आर पार से और ये फिल्म आई थी 1954 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक और गोल्डन एरा का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म बूट पॉलिश है। ये फिल्म आई थी 1954 में और इसके निर्देशक थे प्रकाश अरोड़ा। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में रतन कुमार, नाज, डेविड, चांद बुरके और राज कपूर वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों की अगर बात करें तो इसके गीतों को लिखा था हसरत जयपुरी साहब और शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं मन्ना डे साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह वो नगमा है जो आपके जिंदगी की नुमाइंदगी करता है।

0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल तुम्हें प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझे रुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे रुकना नहीं घबरा

फिल्म बूट पॉलिश का यह नगमा था जिसमें आवाजें थी मन्ना डे साहब और आशा जी की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गोल्डन एरा के इस बेहतरीन नगमे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और गोल्डन एरा का दौर, जैसा कि हमने पहले बताया कि वो दौर था जब सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बना करती थी। ये वो जमाना था जब भारतीय फिल्म में केवल मनोरंजन का जरिया नहीं थी बल्कि समाज, इंसानियत, मोहब्बत, गरीबी, इंसाफ, ख्वाब और जज्बात की गहरी तर्जुमान हुआ करती थी। और ये नगमा भी अभी आपने जो सुना वो भी कुछ ऐसा ही नगमा था। इस दौर की फिल्मों में अदब यानी साहित्य, शायरी, संगीत, बेहतरीन अदाकारी और मजबूत कहानी

कहानी का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने हिंदी सिनेमा को दुनिया भर में पहचान दिलाई। और ये गोल्डन एरा में ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं गोल्डन एरा के गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। और अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से जो अपने आप में बहुत ही मशहूर रही, और वो फिल्म है श्री 420। इसी फिल्म का एक नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, और ये फिल्म आई थी 1955 में, जिसका निर्माण और निर्देशन किया था खुद राज कपूर साहब ने, और साथ ही साथ राज कपूर साहब ने इसमें अभिनय भी किया था। उनके साथ थे नरगिस और नादिरा और भी बहुत सारे कलाकार थे। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके गीतों को लिखा है शैलेंद्र साहब ने और हसरत जयपुरी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का ये बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं लता जी और मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में।

0: அனுபவம்
1: ஹம்
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज अब तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ। स्वागत करता हूँ आपकी अपनी पसंदीदा महफिल गीत मेरे मन मीत की। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:32 और 45 सेकेंड और गीत मेरे मन मीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं और कुछ ऐसे ही बेहद खूबसूरत नगमे हैं जो हम आपके लिए खास तौर से चुन के लाए हैं। तो इस महफिल में इस सफर को और आगे बढ़ाएंगे एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, और ये फिल्म आई थी 1955 में और ये फिल्म है जिसका नाम है आजाद, जिसमें मुख्य किरदार में नजर आए थे दिलीप कुमार साहब और मीना कुमारी जी। साथ ही कलाकारों में ओम प्रकाश, प्राण, राज मेहरा, रणधीर, अचला सचदेव, शम्मी और एस नजीर के साथ साथ मुराद वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है सी रामचंद्र ने। हालांकि इस फिल्म के संगीत के लिए पहले नौशाद साहब को अप्रोच किया गया था लेकिन वक्त की कमी की वजह से उन्होंने मना कर दिया। फिर बाद में सी रामचंद्र साहब ने इस फिल्म का संगीत दिया और वो संगीत अमर हो गया। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है लता जी और उषा मंगेशकर जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मन मीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में आपके लिए।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपके अपने पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं गोल्डन एरा के उन नगमों के साथ जो आपके दिल के बेहद करीब है और उन्हें बार बार हम सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। तो आइए इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं 1956 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म CID से हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस फिल्म का निर्माण किया था गुरुदत्त साहब ने और इसके निर्देशक थे राज खोसला। और इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में देवानंद और शकीला थी और साथ में वहीदा रहमान और साथी कलाकारों में KN सिंह, जॉनी वॉकर, कुमकुम, महमूद, मीनू मुमताज, टुनटुन और जगदीश राज वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। इस फिल्म के सारे ही नगमे उन्होंने ही लिखे हैं लेकिन एक गीत आंखों ही आंखों में इशारा हो गया जिसको लिखा था जानिसार अख्तर साहब ने। और इस फिल्म के गीतों को संगीत से संवारा है OP नैयर साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में।

था, आवाजें थी शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में, जिसमें हम गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। तो आइए इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और गीत मेरे मनमीत में अगला नगमा हम आपको सुनवाते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, और वो फिल्म है 2 आंखें 12 हाथ, और ये फिल्म आई थी 1957 में। वी शांताराम साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था खुद वी शांताराम और संध्या ने, और साथी कलाकारों में बाबूराव पेंडुलकर, साथ ही साथ उल्हास और वीएम व्यास वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। खास बात यह है कि इस फिल्म को कई सारे अवार्ड से नवाजा गया था, जिसमें नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था 1957 में बेस्ट फीचर फिल्म हिंदी के लिए वी शांताराम को ये अवार्ड मिला था, और साथ ही साथ बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर बियर अवार्ड से उनको नवाजा गया था, और साथ ही साथ गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी उनको 1959 में नवाजा गया था। वही इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपको सुनाते हैं लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और इसको संगीत से संवारा है वसंत देसाई साहब ने।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत की महफिल सजी है आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में सुनहरे दौर के उस बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। उन्हीं नगमों में से अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, और वो ये फिल्म है 1960 में आई जिस देश में गंगा बहती है। राज कपूर साहब के निर्माण और राधु कमलकर के निर्देशन में बनी यह फिल्म, जिसमें मुख्य किरदार निभाया था खुद राज कपूर साहब ने, पद्मनी प्राण और उनके साथ थे चंचल, ललिता पवार, राज मेहरा, रामायण तिवारी, नाना पालेसकर और सुलोचना चटर्जी वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और साथ ही साथ शैलेंद्र साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं, लता जी, गीता दत्त और मुकेश साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में, साथ में है मन्ना डे साहब।

0: इसी नगमे के साथ मुझे यानी फिरोज को आप दीजिए इजाजत। गीत मेरे मनमीत से आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद जयती रहेंगे आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कल पुनः हमारी और आपकी मुलाकात होगी। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की।

0: और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौती पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: जम्मू कश्मीर में संसद की विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति ने सीमा प्रबंधन, सुरक्षा तैयारियों और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में सुधार की जानकारी दी, जबकि मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और जन सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया खाड़ी क्षेत्र के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबिया का यह दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। इस दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठकों में क्षेत्रीय सुरक्षा और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। पाकिस्तान के अहमद नदीम ने 3 गोल दागे, लेकिन भारतीय टीम ने बढ़त बनाए रखी और मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली, जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले दो से तीन दिन तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cybersecurity to emerging technologies. Prime Minister Modi met National Security Advisors and Senior Security

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिकंदा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिकंदा में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेला, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

मैंने तुम्हारे लिए अपने भीतर एक घर बनाया था। मैंने तुम्हारे लिए अपने भीतर एक घर बनाया था, दीवारें नहीं बस भरोसा। उस घर में मैं हर शाम अपनी थकान उतारती थी, जैसे औरतें चूल्हे के पास अपनी चूड़ियां उतारती हैं। तुम कभी पूछ नहीं पाए कि मैं रोज इतनी जल्दी क्यों थक जाती हूं। तुम कभी पूछ नहीं पाए कि मैं रोज इतनी जल्दी क्यों थक जाती हूं। तुमने बस यह माना कि मैं सब संभाल लूंगी, जैसे हमेशा से संभालती आई हूं। तुमने बस यह माना कि मैं सब संभाल लूंगी, जैसे हमेशा से संभालती आई हूं। मैंने तुम्हारे सामने कभी जोर से दरवाजा नहीं पटका, बस धीरे धीरे कम बोलने लगी। तुमने इसे मेरी आदत समझ लिया। तुम नहीं जानते कि स्त्रियां जब चुप होती हैं तो वो लड़ नहीं रही होती, वो हिसाब लगा रही होती हैं। स्त्रियां जब चुप होती हैं तो वो लड़ नहीं रही होती, वो हिसाब लगा रही होती हैं कि कितना दिया कितना बचा, कितना दिया कितना बचा। मैंने तुम्हारे लिए अपने भीतर एक घर बनाया था, दीवारें नहीं बस भरोसा, दीवारें नहीं बस भरोसा। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सौदागर, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आज निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

बसंत मालती तुम फिर खिलना, बसंत मालती तुम फिर खिलना मेरे दिनों की थकी हुई डालियों पर, जहां प्रतीक्षा ने अब तक केवल धूप गिनी है और छांव को याद किया है। तुम्हारा पीला कोई साधारण रंग नहीं, तुम्हारा पीला कोई साधारण रंग नहीं, ये समय के माथे पर धैर्य का टीका है जो बताता है कि प्रेम हमेशा तात्कालिक नहीं होता, कभी कभी वो मौसमों से धीमा चलता है। बसंत मालती, मैंने तुम्हें हर वर्ष नहीं पुकारा क्योंकि जानती थी

हर पुकार का उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर जड़ों में पकते हैं, मिट्टी से सलाह लेते हैं और फिर फूल बनते हैं। बसंत मालती, तुम्हें पता है प्रतीक्षा कैसी लिखी जाती है? न घड़ियों से, न कैलेंडर से, बल्कि उन सांसों से जो अधूरी रह जाती है और फिर भी टूटती नहीं। जब तुम खिलती हो तो कोई घोषणा नहीं करती, बस हवा का मिजाज बदल जाता है। पत्तियां समझ जाती हैं कि अब प्रेम

अपने भीतर बहुत सी अधूरी पंक्तियां संजो रखी हैं। वे पंक्तियां जो जल्दबाजी में नहीं कही गई, वे पंक्तियां जो जल्दबाजी में नहीं कही गई, जो संयम से पली और भरोसे से बड़ी हुई। तुम फिर खिलना बसंत मालती, तुम फिर खिलना, ताकि यह यकीन रहे कि एक बार फिर से जीवित रहे, कि प्रतीक्षा कमजोरी नहीं होती, वो प्रेम की सबसे गहरी तैयारी होती है। बसंत मालती तुम फिर खिलना, बसंत मालती तुम फिर खिलना। अगला गीत कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज में, फिल्म का नाम है जुर्म।

FM Gold Channel 100.1 MHz पर। और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे FM गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है कर्ज, आवाज है मोहम्मद रफी की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। मिलते हैं 1:10 पर गीत सुहाने लेकर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट

0: में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों से कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और भूमि उपयोग संबंधी जानकारियां सार्वजनिक करने का आह्वान किया है। लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक में संबोधित करते हुए श्री गुटेरेस ने AI पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वर्ष 2030 तक AI डेटा केंद्रों को पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने की अपील की। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम CB जॉर्ज ने लग्जमबर्ग के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जॉर्ज ने कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे साझेदारी संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने की खूबसूरत सी महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

धूप के कंधों पर दिन उतरता है, धूप के कंधों पर दिन उतरता है, आसमान में किसी के याद की खुशबू तैरती है। धूप के कंधों पर दिन उतरता है, आसमान में किसी याद की खुशबू तैरती है। पत्तों की सरसराहट में जैसे किसी अधूरे वाक्य की आहट सुनाई देती है। गली के मोड़ पर ठहर गई है हवा, जैसे किसी अनकहे नाम को पुकारना भूल गई हो। फूलों की महक अब केवल महक नहीं, वो किसी बिछड़न का मौन संवाद है। पेड़ों के साए लंबे हुए हैं, समय के पन्नों पर फैले हुए शब्दों की तरह। शाम के माथे पर सिंदूरी आंच है, पर भीतर कोई धूप अब भी ठहरी हुई है। और मैं सोचती हूं, क्या हर बहकी हुई हवा में कभी तुम्हारा नाम भी घुला था, या वह बस ऋतु का छलावा था जो हर मौसम में प्रेम का बहाना बन जाता है, जो हर मौसम में प्रेम का बहाना बन जाता है। धूप के कंधों पर दिन उतरता है, आसमान में किसी याद की खुशबू तैरती है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आजाद, आवाज है लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम, आवाज है किशोर कुमार और उषा खन्ना की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मैंने तुम्हारे लिए कोई चमकीली भेंट नहीं चुनी, बस एक साधारण सा दिन तुम्हारे नाम रख दिया था। मैंने तुम्हारे लिए कोई चमकीली भेंट नहीं चुनी, बस एक साधारण सा दिन तुम्हारे नाम रख दिया था। अब जब ऋतुएं बदल चुकी हैं और कई रास्ते अपरिचित हो गए हैं, तब भी वो दिन मेरे भीतर वैसा ही रखा है जैसे किसी पुराने आंगन में बिना देखभाल के भी तुलसी का एक पौधा अपनी हरियाली बचाए रखता है। कुछ लगाव वस्तुओं में नहीं बसते, वे उस अनकहे अंश में रहते हैं जहां दूरी पहुंच जाती है पर मिटा नहीं पाती। कुछ लगाव वस्तुओं में नहीं बसते, वे उस अनकहे अंश में रहते हैं जहां दूरी पहुंच जाती है पर मिटा नहीं पाती। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है चांदनी।

आप सुन रहे हैं रात, आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी आपको जिस गीत के साथ हम छोड़े जा रहे हैं, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है हम दोनों। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मिलते हैं 2:10 पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए

0: लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का यह दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। इस दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी से कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और भूमि उपयोग संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने का आह्वान किया है। लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक में संबोधित करते हुए श्री गुटेरेस ने एआई पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वर्ष 2030 तक एआई डेटा केंद्रों को पवन और सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने की अपील भी की। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम को जीत हासिल कराई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही रोनाल्डो ने विश्व कप इतिहास में नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। वो 6 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चलीं, जिससे तापमान में गिरावट आई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी, आवाज है किशोर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मन की देहरी कोई आंगन नहीं, मन की देहरी कोई आंगन नहीं, ये चेतना की चौखट है जहां समय रुककर स्वयं को सुनता है। मैं इस चौखट पर वर्षों से बैठी हूं, अपने ही शून्य के भीतर तुम्हारे नाम का दीपक गढ़ते हुए। तुम्हारी आहट यहां हवा नहीं, एक नाद है। तुम्हारी आहट यहां हवा नहीं, एक नाद है, जो भीतर के अंधकार को सत्य की ध्वनि में बदल देता है। प्रिय, तुम आओ न देह बनकर, न किसी शब्द की तरह, बल्कि उस अलौकिक आलोक की तरह जिसमें प्रतीक्षा खुद दीप बन जाए। जब तुम आओगे तो मैं ये देहरी पार नहीं करूंगी, बल्कि ये देहरी स्वयं भीतर खुल जाएगी और मेरे मौन में एक आकाश प्रज्वलित होगा। मेरे मौन में एक आकाश प्रज्वलित होगा। मन की देहरी कोई आंगन नहीं, ये चेतना की चौखट है जहां समय रुककर स्वयं को सुनता है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

मेरी वीरानियों पर कोई एहसान न भेज, मेरी वीरानियों पर कोई एहसान न भेज, अब किसी राह से बेवजह मेहमान न भेज। मैंने हर चेहरा परखने में जमाने काटे, मैंने हर चेहरा परखने में जमाने काटे, मेरे हिस्से कोई फिर से नई पहचान न भेज। जिसकी नजरों को मेरी रूह तलक जाना न हो, जिसकी नजरों को मेरी रूह तलक जाना न हो, उसके लिए मेरे दिल का कोई अरमान न भेज। मैं भी सुन लूंगी हवाओं में तेरी मर्जी मगर, मैं भी सुन लूंगी हवाओं में तेरी मर्जी मगर, मेरे आंगन में अधूरा कोई फरमान न भेज, मेरे आंगन में अधूरा कोई फरमान न भेज। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है त्रिशूल, आवाज है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशोदास की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है धरती, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

लौट कर आके देखा तो फूलों का रंग, लौट कर आके देखा तो फूलों का रंग जो कभी सुर्ख था जर्द ही जर्द है। अपना पहलू टटोला तो ऐसा लगा, अपना पहलू टटोला तो ऐसा लगा, दिल जहां था वहां दर्द ही दर्द है, दिल जहां था वहां दर्द ही दर्द है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है इंतकाम, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

और अब वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर अर्चना होंगी आपके साथ। जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर, आवाज है मुकेश की। तो फिर मिलने के वादे के साथ आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण तथा पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मॉनसून से संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट मिशन मोड पर कराया जाए। रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी क्षेत्र के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का यह दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

3:10 हुए हैं दोस्तों। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म नहीं होते बल्कि यादों की खुशबू बनकर दिल में बस जाते हैं, और जब मोहब्बत सच्ची हो तो इंतजार भी एक इबादत बन जाता है। ऐसी ही गहरी भावनाओं को अपनी आवाज दी है आशा भोसले और भूपेंद्र ने फिल्म एतबार के इस गीत में। तो आइए सुनते हैं फिल्म एतबार का ये दिल को छू लेने वाला नगमा।

दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिनका इंतजार बरसों तक दिल करता रहता है, और जब अपनों से या किसी खास शख्स से लंबे अरसे तक मुलाकात नहीं होती है, और जब मुलाकात होती है तो खुशी शब्दों में बयां नहीं हो पाती। इसी खूबसूरत एहसास को सुरों में पिरोया है फिल्म राम लखन के इस मधुर गीत ने, जिसे आवाज दी है मनहर और अनुराधा पौड़वाल ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, दिल की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने की चाहत हर धड़कन को रहती है। प्यार जब अपने एहसास का इजहार चाहता है तो शब्दों में एक मीठी सी बेचैनी और अपनापन झलकने लगता है। फिल्म तेजाब का यह गीत भी इसी खूबसूरत एहसास को बयां करता है। आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार की आवाजों में ये खूबसूरत सा गीत।

3:35 और 38 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। वक्त की रफ्तार चाहे दिनों महीनों और सालों को गुजार दे, लेकिन सच्चे रिश्तों की गर्माहट और अपनापन कभी कम नहीं होता। दूरियां बढ़ सकती हैं, मगर दिलों के बीच की मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। फिल्म अवतार का ये मधुर गीत इसी अटूट साथ और इंतजार से खूबसूरत एहसास को समर्पित करता है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

तो जिंदगी की असली दौलत ना तो सोना है ना चांदी और ना ही कोई अनमोल रत्न। अगर दिल में प्यार और साथ का भरोसा हो तो हर ख्वाहिश पूरी लगने लगती है। ये है फिल्म हीरा पन्ना का गीत, जिसे आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

दोस्तों, कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ दिलों में ही नहीं बल्कि यादों और अफसानों में भी जिंदा रहती हैं। मोहब्बत जब सच

जी हो तो उसकी गूंज वक्त की सीमाओं को पार कर जाती है। फिल्म पिघलता आसमां का ये मधुर गीत प्यार के इसी खूबसूरत एहसास को शब्द देता है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में ये खूबसूरत सा गीत।

प्यार जब दिल की गहराइयों से निकलकर दुआ बन जाए तो हर दूरी मिटाने की चाह और भी बढ़ जाती है। मिलन की उम्मीद साथ निभाने का वादा और एक दूसरे में खो जाने का एहसास, यही तो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत पहचान है। फिल्म प्रेम गीत का ये मधुर नगमा इन्हीं जज्बातों को बड़ी नजाकत से बयां करता है। आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश पाडेकर की आवाजों में ये गीत।

और दोस्तों कार्यक्रम के अंत में आपको जो गीत सुनवा रहे हैं वो है फिल्म एक दूजे के लिए। और बस यही कहेंगे कि जब दो दिल सिर्फ साथ चलने का नहीं बल्कि मिलकर कुछ नया रचने का सपना देखते हैं तब प्यार एक नई कहानी बन जाता है। उम्मीद, विश्वास और सुनहरे भविष्य की यही भावना समेटे हुए है ये मधुर गीत। आवाजें SP बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की। आप सुनिए ये प्यारा सा गीत और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों

एमएसएमई के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। टीआरईडीएस एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का यह दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम को जीत की अहम भूमिका दिलाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 4:10 हुए हैं। दोस्तों आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा और एक बार फिर हूं मैं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। जब मन मजबूत होता है तो कठिन रास्ते भी आसान लगते हैं। हर दिन हमें ऐसे फैसले लेने होते हैं जहां सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है। ऐसे में जरूरत होती है मन की शक्ति की, धैर्य की और अच्छे विचारों की। इसी भावना को बेहद सुंदर शब्दों और मधुर स्वर में पिरोया गया है फिल्म गुड्डी के इस प्रेरणादायक गीत ने। आइए सुनते हैं वाणी जयराम के स्वर में ये गीत।

जीवन की राहों में कभी उजाला होता है तो कभी अंधेरा, लेकिन हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। उम्मीद की छोटी सी किरण भी इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। बस जरूरत है विश्वास बनाए रखने की और अपने सपनों का दामन थामे रखने की। इन्हीं भावनाओं को बड़े सलीके से सजाता है फिल्म हाउस नंबर 44 का ये खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, उनमें अपनापन भी होता है, भरोसा भी और प्यार की वो सादगी भी जो जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। फिल्म दोस्ती का ये मधुर गीत इसी अनमोल एहसास को सुरों में पिरोता है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दोस्ती का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों 4:27 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम अरुणिमा। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। जिंदगी में इंसान का साथ हमेशा रहे ये जरूरी नहीं, लेकिन उसके अच्छे विचार, उसके संस्कार और उसकी दी हुई प्रेरणा हमेशा जिंदा रहती है। समय बदल सकता है, चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन प्यार, अच्छाई और यादों की खुशबू कभी नहीं मिटती। इसलिए जीवन में ऐसे निशान छोड़िए जो आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में मुस्कान बनकर महकते रहें। कुछ इस तरह जैसे ये गीत है फिल्म ममता का, आवाज लता मंगेशकर की।

दोस्तों, जिंदगी हमेशा सीधी और आसान राह नहीं होती। कभी मंजिल बदलती है, कभी रास्ते। लेकिन जो इंसान हालात के साथ खुद को ढालना सीख लेता है, उसके लिए हर मोड़ एक नई शुरुआत बन जाता है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो निराश होने की जरूरत नहीं, नए रास्तों को पहचानने की जरूरत होती है, क्योंकि जिंदगी ठहरने का नाम नहीं बल्कि आगे चलते रहने का नाम है।

दोस्तों, जिंदगी की राहों में जब भी उम्मीद की खुशबू बिखरती है तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। जैसे रजनीगंधा के फूल अपनी महक से वातावरण को सुंदर बना देते हैं, वैसे ही अच्छे विचार और सकारात्मक सोच जीवन को नई ऊर्जा से भर देती है। मुस्कुराते रहिए, सपनों को संजोए रखिए, क्योंकि खुशियों की सुगंध वही महसूस करता है जो

0: दोस्तों, फूलों की तरह जीवन भी हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अपनी खुशबू और मुस्कान कभी कम नहीं होने देनी चाहिए। मुश्किलें आएंगी, मौसम बदलेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के विश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखता है, वही हर दिन को एक नई उम्मीद और नई शुरुआत में बदल देता है। जीवन की खूबसूरती इसी में है कि हम खिलते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने आसपास भी खुशियों की महक बिखेरते रहें।
1: ठीक है, जाओ, माफ किया।
2: थैंक यू, बोलो अंकल को। चलो धीरे धीरे।
1: अगर तुम लोगों को घंटे भर के लिए छत पे खेलने दिया तो शोर तो नहीं मचाओगे?
2: नहीं।

दोस्तों, बहती हुई नदी हमें एक अनमोल संदेश देती है, ये तो सभी जानते हैं। रुकना नहीं, थकना नहीं, जीवन की राह में आंधियां आएंगी, तूफान भी आएंगे, लेकिन जो चलते रहते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। समय की धारा बहुत तेज है, जो ठहर गया वो पीछे छूट गया, इसलिए हर नई सुबह के साथ अपने सपनों की ओर एक कदम जरूर बढ़ाइए।

जिंदगी की असली खुशी सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में भी है। जब हम किसी का सहारा बनते हैं, किसी के दुख को बांटते हैं और बिना किसी स्वार्थ के खुशियां बांटते हैं, तभी जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। दुनिया में सबसे अमीर वही है जिसके पास दुआएं हैं, और सबसे बड़ी सफलता वही है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर चमके।

200 कार्यक्रम के अंत में बस यही कहूंगी कि ये जीवन अनमोल है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक दिन हर इंसान इस दुनिया से विदा ले जाएगा, पर उसके कर्म, उसकी अच्छाइयां और लोगों के दिलों में छोड़ी गई यादें अमर हो जाती हैं। इसलिए समय की कीमत को समझिए, हर दिन को पूरे मन से जिए, रिश्तों में प्यार बांटिए और ऐसा काम कीजिए कि आपकी पहचान सिर्फ नाम से नहीं बल्कि आपके नेक कर्मों से बने। आप सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है धर्म करम और मुझे अब अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का भी समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायण को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यभर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। श्री रूबियो का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप ए के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र

के कुछ हिस्सों में भी 29 जून तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अगले दो दिन तक बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। एक बार फिर से स्वागत करती हूं मैं आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म आए दिन बाहर के से।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और श्रोताओं, अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे गाया है लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है किनारा।